0: You can listen to community announcements and sponsorships on our website, dapanradio.org.au.
1: आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारी वेबसाइट dapanradio.org.au पर देख सकते हैं।
2: भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है?
3: बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au।
4: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। सो श्रोताओं, हमारा पहली अभी भी जारी है और जो एक मूवी आने वाली है बटवारा 1947, उसका एक पास जिसपे आप दो लोग, दो टिकट है उसमें, लेकिन एक पास, सो एक विनर होगा। आज का पहली है कि इस मूवी के डायरेक्टर का नाम क्या है, और वो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, अगर आप दर्पण फोरम में हैं तो आप उसमें अपना नाम लिख दीजिए। अगर आप दर्पण फोरम में, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं, तो आप हमारे मोबाइल फ़ोन पे अपना टेक्स्ट भेज सकते हैं अपना डिटेल के साथ। वो हमारा फ़ोन नंबर है 0468-467-196। तो अभी भी जारी है, हम आपको अपने प्रोग्राम में उसका ट्रेलर भी सुनाएंगे, लेकिन अभी तो कैलाश यात्रा की बातचीत चल रही है तो हम वो पहले करेंगे।
5: जी हाँ श्रोताओं, अब हम समाप्ति की ओर बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कार्यक्रम हैं। आज सावन की भी बातचीत करेंगे, तो शोभना जी, जाते जाते आप क्या संदेश देना चाहेंगी इस यात्रा के विषय में, कैसे रैप अप करेंगी इसको?
6: देखिए, ये यात्रा जितना कठिन है ना, फिजिकली जितना कठिन है
5: जी,
6: उसको अगर आप साइड में थोड़ा रखेंगे तो आपको बस यही मान के चलना है कि दिस इज़ ए ट्रांसफॉर्मेशन फॉर योर सोल
5: जी।
6: मतलब आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा, आपका जो इनर जर्नी है आपके सोल के लिए
5: जी,
6: ये यात्रा उसके लिए है जी। तो अगर आप कैलाश मानसरोवर यात्रा पे जाना चाहते हैं तो इतना आप समझ लीजिए कि ये यात्रा आपके आत्मा के लिए है, आपकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए।
5: वाह, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात कही। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए हमसे क्योंकि अभी सावन की हम चर्चा करेंगे, और शिव जी का और सावन का तो जो है ना, वो एक दूसरे के पहलू हैं कि सावन में शिव जी की पूजा का जितना महत्व है और जो भी सेलिब्रेशन है हरियाली का, वो एक दूसरे को जोड़ते हैं। तो श्रोताओं, सावन की तैयारी करते हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं, और आपको बता दूं कि जब भी सावन का ये महीना होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आदमी स्पिरिचुअल तो हो जाता है मानसिक रूप से, लेकिन शरीर में भी एक अलग सी ही फुर्ती आ जाती है। हमेशा आपको हर जगह हरियाली दिखती है, हरा भरा, बारिश हो रही है, तो मन एक अलग शांति की ओर बढ़ने लगता है, और सेलिब्रेशन तो होता ही है। तो आइए इस लोक परंपरा के बारे में आपको बताते हैं और सावन की रिमझिम फुहारों से आपको मिलाते हैं। तो श्रोतागण, बारिश की रिमझिम फुहारें, मिट्टी की सौंधी खुशबू, मोर का नृत्य, कोयल की मधुर कूक, पेड़ों पर पड़े झूले, हाथों में रची मेहंदी और बोल बम का जय घोष, जी हाँ, यही तो है सावन। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन वर्ष का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। ये महीना भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए हर सोमवार को शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। कहीं कांवड़ यात्रा निकलती है और कहीं रुद्राभिषेक होता है। कहीं महिलाएं शिव पार्वती की पूजा कर अपने परिवार को सुख समृद्धि की कामना करती हैं। लेकिन सावन महीना केवल पूजा पाठ का महीना नहीं है, यह प्रकृति के उत्सव, रिश्तों की मिठास और आपको प्रकृति से मिलाने का भी एक महीना है। पुराने समय में सावन लगते ही बेटियां अपने भाइयों के साथ मायके आ जाया करती थीं। पूरा महीना हंसी खुशी अपनेपन और उत्सव में बीतता था और फिर रक्षाबंधन के बाद भाई उन्हें वापस ससुराल छोड़ आते थे। इस दौरान सखियों से मिलना, झूला झूलना, मेहंदी लगाना, लोकगीत गाना और माँ के हाथ का खाना, ये सब सावन की सबसे सुंदर यादें हुआ करती हैं। तो चलिए उस पलों को याद करते हुए उस पल में पहुँचते हैं और सुनते हैं सावन का वेलकम करते हुए ये गीत।

0: दिन तक तक मन के मोर नचाता आया, मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहने भी हरी सुनरिया बन के दुनिया।
1: एक लगन बुझी,
2: एक लगन लगी,
1: मन मगन हुआ।

0: Curry Master's Complete Curry Mix available at all leading spice shops.
1: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश।
2: तो हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं सावन महीने की और उससे जुड़े हुए त्योहारों की। तो सावन महीने में मुख्यतः तीन तरह की तीज मनाई जाती है, जो कि सावन में नहीं है। सावन में सबसे पहली तीज पड़ती है हरियाली तीज। सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज मनाई जाती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह हरियाली और खुशहाली का पर्व है। इस दिन महिलाएं और युवतियां हरे रंग के वस्त्र पहनती हैं, हरी चूड़ियां धारण करती हैं, हाथों में मेहंदी रचाती हैं और अपने सखियों के साथ झूला झूलती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर अखंड सौभाग्य, सुख और समृद्धि की कामना करती हैं। हरियाली तीज में ये व्रत का पर्व नहीं है, ये सखियों के मिलन का, प्रेम अपनत्व और प्रकृति के

मेरे पहनावे में, और मैं वर्क पे भी जाती हूँ तो उनको बताती हूँ कि ये हमारा जो है ग्रीन मंथ है, तो कई लोग हमको फॉलो भी करते हैं मेरे वर्क पे। और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी ये कोशिश करें कि अगर हरे कपड़े हैं तो या हरी चूड़ियाँ ही डाल लें, तो कुछ ना कुछ हरियाली को आप सेलिब्रेट करिए इस महीने में, शिव पूजा कीजिए। और आपको बता दें कि ट्रिपल एस इवेंट जो कुछ महिलाएं मिलकर ऑर्गेनाइज करती हैं, वो हरियाली तीज के पर्व को बहुत मनाती हैं धूमधाम से, क्योंकि ये सखियों का पर्व है, सखियों के मिलन का पर्व है, तो एक सिस्टरहुड हम बनाने की कोशिश करते हैं। इस वर्ष हम हरियाली तीज का पर्व मना रहे हैं 23 अगस्त संडे को 12 बजे से 4 बजे तक इसको मनाएंगे, और पहली बार हम क्रूज़ पे इस पर्व को मना रहे हैं। ये लेडीज़ ओनली त्यौहार हम मनाते हैं, और हम चाहेंगे कि सभी महिलाएं जो भी सुन रही हैं वो जुड़ें, क्योंकि वहाँ पे हम कजरी गाते हैं, और जितने भी भारत के लोकगीत हैं शिव से जुड़े हुए लोकगीत जो कि सावन बारिश को दर्शाते हैं वो हम गाते हैं, और एक साथ का जो है आनंद और अनुभव लेते हैं। तो ज़रूर जुड़ें, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपको टिकट चाहिए इसके लिए। तो ये हुई सावन की तीज जो कि हरियाली तीज होती है, सखियों का पर्व। दूसरा तीज होता है कजरी तीज। कजरी तीज हमें याद दिलाती है कि ये सिर्फ कजरी लोकगीत ही नहीं है, मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। कजरी तीज में कजरी आप गाएं तो उसमें एक कहानी सी आपको सुनाई देती है, जिस जगह की कजरी तीज होती है उस परंपरा के बारे में वर्णन रहता है, स्त्री मन की भावनाएं, परिवार का अपनापन और गांव की मिट्टी की महक को दर्शाता है। तो ये हो गई कजरी तीज की बात। तीसरी तीज जो मुख्य होती है हरतालिका तीज। तो सावन के बाद भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं माता पार्वती की कठोर तपस्या करके भगवान शिव से उनके दिव्य मिलन का स्मरण करते हुए व्रत करती हैं। यह पर्व श्रद्धा विश्वास और अटूट समर्पण का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, सावन की ये बातें सुनने के बाद एक आपका मन कर रहा होगा कि एक गीत ज़रूर सुने सावन का, आइए सुनते हैं।

0: contact The Hindi Show for sponsorship and phone 0413 385 976.
1: Darpan Hindi Karyakram mein sponsorship ke liye sampark kare phone number 0413 38.
2: Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405. That's 8095-9405. Or visit our website, www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio.
3: श्रोताओं, सावन की बात चल रही है और सावन के गीत आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, सावन हमें केवल त्यौहार मनाना नहीं सिखाता, बल्कि जीवन को हरा भरा बनाना भी सिखाता है। ये हमें प्रकृति से प्रेम करना, रिश्तों को समय देना और अपनी लोक परंपराओं को संजो कर अगली पीढ़ी तक पहुंचाना भी सिखाता है। आज भले ही शहरों की भाग दौड़ में झूले कम दिखाई देते हों, लेकिन सावन की पहली बारिश आज भी मन को बचपन की गलियों में ले जाती है। मेहंदी की खुशबू, सखियों की हंसी, कजरी की तान और शिव मंदिर की घंटियां आज भी वही सुकून देती हैं। तो श्रोताओं, कुछ लाइनें, दो लाइनें आपके लिए गाना चाहती थी वेलकम करने के लिए, जो मैं भूल गई, आइए अब आपको सुना देती हूँ। सावन की सब को बधाई श्री राधा रानी झूलन को आई। सावन की सब को बधाई श्री राधा रानी झूलन को आई। तो आप सबको एक बार फिर से बधाई सावन की। आइए इस सावन हम एक पौधा भी लगाएं, अपने परिवार के साथ समय भी बिताएं और अपनी संस्कृति की इन सुंदर परंपराओं को जीवित रखें, क्योंकि सावन केवल ऋतु नहीं, एक अनुभूति है। हरियाली केवल पेड़ों में नहीं, रिश्तों में भी होनी चाहिए। आप सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।

0: श्रोताओं, ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 39 पदक, 13 गोल्ड और 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज जीते हैं और पदक तालिका में चौथे स्थान पर, जो कि इनका बेस्ट है अब तक का अपना अभिमान। ये कल का दिन बहुत अच्छा रहा। मुख्य हाइलाइट्स जो है बॉक्सिंग, भारतीय मुक्केबाजी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 गोल्ड और 3 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज अपने नाम किए हैं। प्रीति पवार, जैस्मिन लाबेरिया एंड लवलीना बोरगोहेंस जैसे खिलाड़ियों ने शानदार सफलता हासिल की। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 केजी क्लास में गोल्ड लिया है और राष्ट्रमंग इसमें जो अभी तक का ऐतिहासिक हैट्रिक पूरा किया है, 3 बार इन्होंने किया है जो। और एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स में दिलीप महादू गाविद ने पुरुषों के 100 मीटर की स्पर्धा में रिकॉर्ड के साथ गोल्ड जीता है, जबकि कुलवीर सिंह ने 10 किलोमीटर में सिल्वर और 5 किलोमीटर में ब्रॉन्ज हासिल किया है। शर्मिला धनकर ने महिला शॉटपुट में जो है स्वर्ण पदक जीता है। तो भारतीय एथलीटों के शानदार प्रदर्शन और पदकों की पूरी जानकारी के लिए आप जो है इनके कॉमनवेल्थ गेम्स वेबसाइट में जाएं।
1: बहुत अच्छी बात और भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। तो श्रोताओं, फ़ोन पे जो है साई परस्तु जी हमसे जुड़े हुए हैं जो सेंसस की बातें करेंगे। साई परस्तु जी जो हैं वो हिंदू काउंसिल से हैं। आपका दर्पण रेडियो पे बहुत बहुत स्वागत है साई जी।
2: नमस्ते ऋचा जी, धन्यवाद।
1: तो आप
2: श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम।
1: धन्यवाद। और आप बताइए कि सेंसस के बारे में आप क्या बढ़िया जानकारी लेके आए हैं हमारे श्रोताओं के लिए।
2: जी, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए सभी जनों को पता ही होगा, हर 5 साल यहाँ पे जनसंख्या गणित होता है
1: जी,
2: और उसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक सर्वे है लंबा सा, नॉन मैंडेटरी, वोटिंग जैसा ये मैंडेटरी नहीं है, पर करना जरूरी है क्योंकि ये हमारे भले के लिए है
1: जी।
2: जैसे हम सबको पता है ऑस्ट्रेलिया मल्टीकल्चरल कंट्री है, कई देशों से लोग आए हैं यहाँ पे और बस रहे हैं और अपना अपना जो रहन पान वो पूरा जैसे वो रहते थे, जैसे वो उनकी संस्कृति सभ्यता है, वैसा वो हमको यहाँ जीने का अधिकार है। तो इसमें हमारा भी एक दायित्व बनता है कि हम बताएं उनको कि हम कैसे जीते, हम कौन है और कहाँ से आए। तो
1: क्या आप प्रश्न यही होता है करते हैं लोगों से, क्या चाहते हैं कि वो कैसे इस फॉर्म को फिल करें और क्या जानकारी उन्हें जरूर देनी चाहिए।
2: जी, तो पिछले सेंसस में ये पता चला कि कई लोगों ने एक प्रश्न का उत्तर बराबर दिया नहीं, 1 in 3 ने रिलीजन का जवाब नहीं दिया।
1: अच्छा।
2: जो कि ओवर प्रैक्टिसिंग, वो जाते होंगे चर्च में जाते होंगे या गुरुद्वारा जाते होंगे, मंदिर जाते होंगे, पर उन्होंने बताया नहीं कि वो जाते हैं करके।
1: अच्छा।
2: तो उससे नुकसान ये हुआ ना, वो लोग गणित में नहीं आए।
1: अच्छा।
2: मतलब यही है कि अगर उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है
1: जी,
2: जो भी आस्था रखते हैं वो पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि सरकार को पता ही नहीं है ये लोग ये है, इनको ये चाहिए करके
1: जी।
2: तो ये सबसे बड़ा मुश्किल है जिसको हमें झेलना है। इसका सरल उपाय है, 3 प्रश्न है जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे हिंदू धर्म वालों के लिए
1: जी,
2: या सभी धर्मों के लिए भी। एक तो अपना धर्म बताए, रिलीजन which is a non-mandatory question, पर बताया कि वो क्या फॉलो करता है. हिंदुइज्म इज ऑलरेडी लिस्टेड इन दैट, उनको सिर्फ आपको टिक करना है. इफ यू आर अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, इट डजंट मैटर व्हाट प्रैक्टिस इट इज, फॉर्मलेस फॉर्मफुल जो भी है, बट वी आर प्रैक्टिसिंग हिंदू, तो हिंदू से है तो हिंदू करे.
1: दूसरा एंसेस्ट्री,
2: दूसरा क्वेश्चन है एंसेस्ट्री. इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है मेरे हिसाब से.
1: जी.
2: अगर मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ ऑस्ट्रेलिया में, तो इज माई एंसेस्ट्री ऑस्ट्रेलिया. अगर इफ आई एम बोर्न इन इंडिया, क्या मेरा एंसेस्ट्री इंडिया है, जो कि मैं ये रहता तो यहाँ हूँ, सिटीजन ऑस्ट्रेलिया को. तो एंसेस्ट्री का सिंपल आंसर यही है कि आप अपने सात पूर्वज देखे, सात पुरखों से आप जहां से आए वहां का देखना चाहिए. तो कई सारे फीजी इंडियंस से भी मैं बात करते रहता हूँ, तो वो बोलते हैं कि उनका उनका एंसेस्ट्री इंडिया है, उनका हेरिटेज हिंदू है.
1: जी.
2: तो एंसेस्ट्री इज कई लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए भी उनका एंसेस्ट्री इंडिया ही होता है.
1: जी.
2: तो वो एक ना भूले. तीसरे है भाषा, क्योंकि ऑप्शन है, हमारी भाषा वहां लिखी नहीं होगी शायद इन द लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस, पर हम अदर में लिख सकते हैं कि हम क्या क्या भाषा बोलते हैं. तो अक्सर क्या होता है, लोग अंग्रेजी लिख देते हैं.
1: जी.
2: क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे वही बात करते हैं रोज रोज रोज का, तो वो अंग्रेजी भी एक भाषा है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मत लिखे, लेकिन वो हमारी भाषा नहीं है. हमारी मातृभाषा जो होती है उसका क्वेश्चन इज अबाउट आवर मदर टंग. तो मातृभाषा क्या होती है, मेरे लिए तेलुगु है, पर मैं तो ये मैं ऐसे लिखता हूँ, ये सिर्फ मेरा सुझाव है कि मैं संस्कृत लिख के तेलुगु लिखता हूँ, क्योंकि मेरे लिए भाषा सभी भाषा संस्कृत से आया है. और वो भी मैं करता हूँ क्योंकि रोज मैं पूजा पाठ करता हूँ, तो मुझे संस्कृत में ही पढ़ता हूँ मैं.
1: जी.
2: तो मेरे लिए संस्कृत भी है और तेलुगु भी है, ये मैं मेरी भाषा बता रहा हूँ. सरकार यही पूछती है कि, तो उस हिसाब से वो हमारे हमारे लिए प्रबंध करेंगे जो भी हमें भाषा के लिए चाहिए होगा वो.
1: जैसे मैं तो सिर्फ हिंदी भाषा बोलती हूँ, तो मुझे हिंदी लिखना चाहिए सिर्फ.
2: जी, हिंदी लिखना चाहिए. और संस्कृत से ही आया, संस्कृत भी आप अगर पढ़ते होंगे तो संस्कृत भी अच्छा हिंदी में लिखा जाता है.
1: तो श्लोक और श्लोक और मंत्र तो संस्कृत में ही होते हैं, तो क्या हमें लिखना चाहिए, ये सुझाव के तौर पर ही पूछ रही हूँ कि मुझे लिखना चाहिए संस्कृत कॉमा हिंदी.
2: यस.
1: जी.
2: वो सही रहेगा.
1: जी.
2: एंड इंग्लिश भी लिख सकते हैं आखिरी में लिखना है तो, क्योंकि वो हम बोलते भी है.
1: जी. तो नहीं, चलिए बहुत अच्छा सुझाव है. और कुछ आप कहना चाहेंगे सेंसस के बारे में?
2: सेंसस के बारे में अभी तो देखिए सेंसस खुल गया है, इट्स एन ऑनलाइन सर्वे, तो 11 अगस्त को है, पर अगर आपके पास समय है तो अभी भी कर सकते हैं आप, इट्स ऑलरेडी ओपन. तो पर करें जरूर, और ये चीजों की ध्यान रखें, और सबसे बात भी करें. अगर आप जनरली हमारा होता ही है कि हम ऑफिस जाते हैं तो सोमवार के दिन लोग पूछते हैं कि हाउ वाज योर वीकेंड, ऐसा कुछ लूज स्मॉल टॉक होता है, तो उसमें भी अपने भाई बंधुओं से बात करें कि सेंसस के बारे में, और उनको भी ये अपनी विचारधारा बताए कि ऐसा ऐसा करना है और क्यों करना है.
1: जी,
2: इससे हमारे फैसिलिटीज बनती है, हमारे लिए स्कूल्स बन सकती है, हमारे कम्युनिटी नीड्स बन सकती है, इससे हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आएंगे हॉस्पिटल्स में. जो इसका इसके परिणाम इसके जो बेनिफिट्स है वो कई सारे हैं. तो वो सोचते हुए ये सिर्फ एक सर्वे है, इसके वजह से एक स्टैटिस्टिक्स बनेगा ये नहीं है. इससे सरकार को एक मिलता है कि डाटा की किसके लिए क्या बनाए हम.
1: जी.
2: तेलुगु बात करने वाले ज्यादा है तो इनके लिए क्या कर सकते हैं, लाइब्रेरी में पुस्तक बना सकते हैं या क्या क्या फैसिलिटीज दे सकते हैं, वो देखने का एक मौका मिलता है.
1: यही एक मौका है कि सरकार को हम बता सकते हैं कि जो है ना क्या हम प्रैक्टिस करते हैं और क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है.
2: जी बिल्कुल. जी. आपकी बात सही है. और यही एक हमारे लिए भी एक मौका है, जब हम जाते हैं जैसे हिंदू काउंसिल का एक काम होता है गवर्नमेंट के साथ एडवोकेसी करते हैं हम लोग, कि हम बोलते हैं कि हमारे समाज को क्या चाहिए.
1: जी.
2: जब हम बोलते हैं कि हमें एक ग्रंथालय चाहिए जिसमें हमें पुस्तक चाहिए सभी भाषा के, तो स्टैटिस्टिक्स में जाके देखेंगे. अगर किसी ने लिखा ही नहीं कि हमारे पास एक भाषा है मैथिली या एक तेलुगु या एक तमिल हिंदी, तो वो कहाँ से बोलेंगे, वो तो बोलेंगे कि हमारे पास है ही नहीं, तो हम क्यों करे करे ना,
1: नहीं ये
2: तो
1: बहुत
2: ये भी एक
1: बहुत
2: प्रश्न
1: जरूरी
2: होता है।
1: बहुत जरूरी बात आपने बताई है जी। नहीं चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साईं जी कि आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी जो कि हमारे समाज के लिए, समुदाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सारे टीम का, दर्पण रेडियो का, जो ये कार्यक्रम हर रविवार को लेके आते हैं हमारे सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार, थैंक यू। तो श्रोताओं, आज हम सावन की बात कर रहे हैं, तो अभी बीच में बात हो रही थी शोभना जी से और वो कुछ ज़रूरी बात बताना चाहती हैं सावन के बारे में। जी शोभना जी।
3: थैंक यू। ऋचा जी, आप जैसे हरियाली तीज के बारे में आपने, तीन अलग अलग प्रकार के तीज के बारे में आपने बताया
1: जी,
3: लेकिन व्हाट इज़ द ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ द मंथ ऑफ श्रवण, ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, उत्सव ज़रूर होते हैं
1: जी,
3: ट्रेडिशंस होते हैं, लेकिन श्रवण का महीना इज़ द होलीएस्ट मंथ इन द हिंदू स्पिरिचुअल कैलेंडर
1: जी।
3: और इसमें क्या होती है ना, रेनफॉल के साथ रिबर्थ होती है, फर्टिलिटी होती है, तो ये तो फिजिकैलिटी ऑफ द एक्चुअल मंथ होती है, लेकिन व्हाट इज दिस मीन फॉर अस, हमको क्या करना है। तो इस महीने में एक भक्ता को, मतलब अपने आप को, अपने सेल्फ को क्लेंस करना है
1: जी।
3: क्लेंस आप कैसे कर सकते हैं, थ्रू डिवोशन। जैसे आप शिवलिंग पे आप जब जल चढ़ाते हो या पंचामृत चढ़ाते हो, अभिषेक करते हो
1: जी,
3: उस अभाव से आप अपने माइंड को भी क्लेंस करें, अपने कर्म को भी क्लेंस करें और अपने आत्मा को भी परमात्मा से आप जोड़ने की पूरी प्रयास करें। सो द होल पॉइंट ऑफ द मंथ ऑफ श्रवण इज अ रीबर्थ फॉर योर सोल, अ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर योर सोल।
1: क्या बात कही, बिल्कुल। तो इसे हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, नहीं, और इस बात को प्रैक्टिस भी करना चाहिए। नहीं,
3: बिल्कुल।
1: बहुत अच्छी बात। चलिए सुनते हैं सावन का एक और गीत जो

0: भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है?
1: बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया व सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au।
2: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। और श्रोताओं, हमारा पहली अभी भी जारी है। बस अगर आपने अभी तक अपना उत्तर नहीं डाला है पहली में, तो जल्दी जल्दी दे दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप दर्पण फोरम में अपना जवाब दे दीजिए। पहली है बंटवारा 1947, जो मूवी अभी आने वाली है, तो उसका जो है डायरेक्टर का क्या नाम है?
3: श्रोताओं, अभी जो आपने गीत सुना था, जहुना आए बालमा सावन बीता जाए, तो ये गीत जो है वो फिल्म सांझ और सवेरा फिल्म से था। इसके म्यूज़िक डायरेक्टर रहे शंकर जयकिशन और गीतकार थे हसरत जयपुरी। बहुत ही खूबसूरत गाना, जिसे गाया था मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर ने। तो अगर आज हम बातें करेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब की भी, इसलिए बातें करेंगे क्योंकि उनकी पुण्यतिथि थी 31 जुलाई को। और इतने अमर कलाकार के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। उनके गीत तो अमर हैं ही, उनकी आवाज़ अमर है, लेकिन जो भी उन्होंने खूबसूरती रोमांटिक सॉन्ग हो, चाहे वो जो है देशभक्ति के हों, चाहे वो भजन हो, उसमें जो खूबसूरती उन्होंने दी है, कहते हैं दिल को छूने वाली आवाज़ जो दी है, उसे हम कभी नहीं भूल सकते हैं। मोहम्मद रफ़ी एक आवाज़ जो कभी खामोश नहीं हुई। आप ये आवाज़ें कुछ तो कानों तक पहुंच के रह जाती हैं, लेकिन कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों जो सीधे दिल में उतर जाती हैं। कुछ लोग दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ सदियों तक ज़िंदा रहती है। और ऐसी ही आवाज़, अमर आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी साहब की। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उनको याद करते हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो आइए सुनते हैं रफ़ी साहब की कुछ बातें आपको बताना चाहूँगी। उनके बारे में कहा जाता है कि अगर भावनाओं की कोई आवाज़ होती तो वो मोहम्मद रफ़ी साहब की होती। चाहे वो भक्ति हो, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, या वो 14वीं का चांद हो, दिन ढल जाए रात न जाए, तो इसे कितने भी अनगिनत गाने जो है ना, जिसको उन्होंने जो है वो अमर बना दिया। उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी दरिया दिली बहुत ही मशहूर थी। जब संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अपने करियर की शुरुआती दौर में थे, तब उनके पास रफ़ी साहब को देने के लिए पैसे नहीं थे। ये बात जानकर रफ़ी साहब ने कहा, पैसों की चिंता मत करो, और उन्होंने केवल 1 रुपये में वो गीत रिकॉर्ड किया। और जब बाद में प्यारेलाल लक्ष्मीकांत सफल हो गए, तो वो हमेशा कहते थे रफ़ी साहब का ये उपकार वो कभी नहीं भूल सकते थे। तो ऐसे महान व्यक्ति थे रफ़ी साहब। इतने बड़े कलाकार होते हुए भी बहुत ही दरिया दिल थे। उनके बारे में एक और दिलचस्प किस्सा कहा जाता है उनकी सादगी के बारे में। कहा जाता है कि एक बार किसी ने रफ़ी साहब से पूछा, आप इतने बड़े गायक हैं, फिर भी आपके भीतर ज़रा भी घमंड क्यों नहीं? रफ़ी साहब ने मुस्करा कर कहा, आवाज़ मेरी नहीं, ऊपर वाले की देन है, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। यही कारण था कि उन्होंने कभी अपने साथी कलाकारों को प्रतिस्पर्धी नहीं माना। वो मुकेश, मन्ना डे, किशोर कुमार, तलत महमूद जैसे सभी गायकों का दिल से सम्मान करते थे। तो शायद यही विनम्रता उनकी गायकी में भी झलकती थी। जब वो भजन गाते थे तो लगता था कि जैसे भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा हो। जब गज़ल गाते थे तो हर शब्द दिल में महसूस होता था। तो आइए क्यों ना उनका एक गीत सुन लेते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं।

0: श्रोताओं, हम बातचीत कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की, उनकी पुण्यतिथि पर उनको याद कर रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी की अगर बात कहें तो उनके हर एक गीत जो हैं वो दिल को छू लेने वाले हैं, क्या कहें। मैं ये कह, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा शोभना जी, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ आप सुनते हैं उनको?
1: मैं ज़्यादातर फिल्मी गाने नहीं सुनती हूँ।
0: अच्छा,
1: टू बी ऑनेस्ट, लेकिन हाँ, सिंगर तो वो बहुत अच्छे थे, बहुत फेमस भी था। मेरा तो ध्यान ज़्यादातर भजन पे होते हैं।
0: तो उनका भजन आपने ज़रूर सुना होगा।
1: जी अभी तो याद नहीं है, लेकिन आई लव भजन, और मोहम्मद रफ़ी साहब को भी मैं बहुत बहुत पसंद करती हूँ।
0: जी,
1: मौका मिलता है तो मैं सुन लेती हूँ।
0: जी,
1: सुना भी लेती हूँ, और आज यहाँ मौका मिल रहा है इतने सुंदर सुंदर भजन सुनने के लिए। आपने आपका सिलेक्शन जो है बहुत ही अच्छी है, और श्रवण का भी जो सॉन्ग्स आपने चूज किया, मैं जैसे बोल रही थी ना कि कुछ कुछ गीत तो मैंने कभी सुना भी नहीं।
0: हम वही सोचते हैं कि जो गाने जो है ना बहुत नहीं सुने जाते, उनको भी लाया जाए। तो आपको बताएं श्रोताओं कि बहुत कम लोग जानते हैं कि रफ़ी साहब ने हिंदी के अलावा पंजाबी, बंगाली, मराठी, गुजराती, भोजपुरी, कन्नड़, तेलुगू, तमिल, कोंकणी और अन्य भाषाओं में भी गीत गाए हैं। उन्होंने लगभग 26,000 से अधिक गीतों को अपनी आवाज़ दी। इतनी विविधता और गुणवत्ता शायद ही किसी गायक में हमें देखने को मिली। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 6 फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिले, लेकिन उनका सबसे बड़ा सम्मान था करोड़ों श्रोताओं का प्यार। 31 जुलाई 1980 को जब उनके निधन का समाचार आया तो पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। मुंबई की सड़कों पर हजारों लोग उन्हें अंतिम विदाई देने उमड़ पड़े। ये केवल एक गायक की विदाई नहीं थी, बल्कि एक युग की विदाई थी। लेकिन सच तो ये है कि रफ़ी साहब कभी गए ही नहीं। वो आज भी हर रेडियो स्टेशन पर, हर संगीत प्रेमी की प्लेलिस्ट में, हर महफिल में और करोड़ों दिलों में जीवित हैं। वो सुरों का ऐसा दरिया थे जो कभी सूखा ही नहीं, जिसमें भले ही चला गया मगर उनकी आवाज़ कभी रुकी ही नहीं। आइए इस अमर गायक को उनकी पुण्यतिथि

0: लेना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान।
1: हाँ तो श्रोताओं, आज की पहेली का मतलब हमने जो है लॉटरी से निकाला है कि बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना जवाब दिया है, और डायरेक्टर का नाम है जो सभी लोगों ने इजीली बता दिया कि इसका नाम है राजकुमार संतोषी। तो ये पिक्चर बहुत अच्छी है, मैं आपको ट्रेलर भी दिखाता हूँ, लेकिन इसके पहले मैं विनर का नाम बता देता हूँ। जो आज की विनर है मंजू मल्होत्रा। सो थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग।
2: देश की आजादी मुबारक हो।
3: आपको भी बहुत मुबारक हो।
4: कौन सी आजादी और किसका मुल्क? ये हिंदुओं का मुल्क है, हिंदुओं का।

श्रोताओं, इसी के साथ आज का समय समाप्त होता है और उम्मीद है कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अपनी टिप्पणियां ज़रूर भेजिएगा ताकि हम बेहतर प्रोग्राम प्रस्तुत कर सकें। शोभना शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए और इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए। जी जी हाँ, आप हमारे दर्पण फोरम में हैं तो ज़रूर पूछिए और आगे भी ज़रूर हमसे जुड़े रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।

0: You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@dapanradio.org.au.
1: आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम. हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से. अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में. ईमेल कीजिए feedback@dapanradio.org.au.